0: 椒树富含水分，班达用它为一种藤本作物保湿。这是胡椒，现在它绿色的浆果已经密接成串。
1: ये नहीं दी मां जी सारे नहीं तो बैठो जाना बोलो सारे सारे नहीं आने